उपमा महा कलगीधर पातशाह कहंदे ने अकाल पुरख तू राजियां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उडारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने इना

समझायो इम कह के लोक पठायो। मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नी संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बेबान विच बैठे ने, वो बेबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले, आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया, मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण

श्रोमणी कमेटी ने अरदास विच लफज दर्ज किए हुए ने हरिमंदर साहब तो ही ये लफज बोले जाते ने युग आ गया टीवी का रेडियो का हर सिख दे घर विच लफज पहुंचते ने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता हे मेरे माधो हे वाहिगुरु मैनू उन्हां दा मेल करा जिन्हां नूं मैं मिलां ते पढ़ां ते मैनू तेरा नाम चेते आवे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं बचता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी है, होर भी कई कुछ। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले माई दे पे जी, आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांझन। बाबा ही कौले माई दे पे, कोला हाथ चे नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला माईदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों हिंग नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी दे, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही है, सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहंदे दीप सिंह कोले माई दा ते बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोबिंद सिंह

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हें आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचा भी हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी जांदी।

ते राजे ने पूछ कीती, आखण लगा तेरी खड़ाम किथे है। राणी ने आखिया, मेरे पैरां विच है। भई मैं पूछिया

मैं ही तेरी खड़ाम चुक के ले आया था, पर तू मैनू ए दस, ए ते मैं चुक ले आया सी ते तेरे पैरां विच किवें? प्यार विच भिज के आखन लगी, जदों संगत अरदास करदी है ना ते गुरु रहमत करदा है। स्वामी कीर्तन विच बड़ियां बख्शां ने, कीर्तन विच बड़ियां ही रहमतां ने। खड़ावां ते इक पासे, उत्थे ते जिंदगियां भी मिलदियां ने। सारी संगत ने मिलके अरदास कीती ते तां मेरी खड़ाम वापस आई। जदों इस तरह तारा राणी ने दसिया ना, ते अज राजे दा भी सिर चुक गया, आखन लगा मैनू भी लेके जाया कर संगत विच। मैं जानदा ही नहीं सी भी कीर्तन विच एडियां रहमतां ने। सो सतसंगियो, अज ए राजा भी कीर्तन विच जांदा है, हुण ए भी कीर्तन विच बैठ के सवाल सफले करदा है। सो गुरु प्यारियो, कीर्तन विच बड़ियां ही रहमतां ने। जेड़ा कीर्तन विच बैंदा है उनू घाटा नहीं पैंदा। कई वार असी सोच लेंदे हां वे घंटा दो घंटे जे गुरुद्वारे बैठांगे शायद सानू काम विच घाटा पै जाएगा, कभी भी घाटा नहीं पैंदा। जेड़े सवास असां गुरु दे कीर्तन विच बैठ के गुजारे ने ना, उन्हां सवासां दे बदले ते किन्ने गुणा ज्यादियां रहमतां गुरु देंदा है। बहुत रहमतां मिलदियां ने। 24 घंटियां विच 2.5-3 घंटे सवासां दा दसवंध बनदा है। ये कीर्तन विच बैठ के गुजार दईए ना ते 24 घंटियां दे सवास सफले हो जांदे ने। ये आपां ख्याल रखना है। शुभा शाम संगत विच बैठना है।

0: भजो गोविंद भूल मत जाओ।
1: इथे कीर्तन समाप्ति कर दें, कीर्तन करदे बाणी पढ़दे आप जी आनंद सेवकंद को बेंत फुला हुई होगी, आप जी बख्शन योग हो फुलां चुका लिखेवा। आयो संगता वालों परम पूज सिंह साहब जी वालों बेंत माया शोध पीठ हाजर है पातशाह जी, जिन्हें खजाने जमाए सुख जाने भरपूर करने सत खालसा जी काज राश करने हुक्म है जी। पंच मिनट का शब्द मंत करते कि कीर्तन कर जाइए। सवैये महले चौथे केजी के बिचों

0: कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरणी की चुग्गी पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जपके नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति होर जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंतल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम हुआ कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वह दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

बुद्ध सभी पुत्र जो उजियारे जाने की बढ़ने मनो हाथ ले जाने की बढ़ने।

जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ध्यान देना, इच्छा रख के पढ़ेगा सो पदार्थ पाएगा। असी आम तौर पर इच्छा रख के पढ़ने हैं, असी बाणी पढ़ने हैं, कोई ना कोई मकसद सामने होता। महाराज कहते ने मकसद पूरे हो जाने, जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा उहदे मकसद पूरे रखो। ते महाराज कहते ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान हो, जेड़ा बाणी नूं ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा वो आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नूं समझण वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखां ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया, विचार नाल भी पढ़िया, इच्छा करके भी पढ़े, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वह है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होती। भाई साहब पूजा तो हो गई गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सारसराय को पहुंचे ने, पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सारसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहता मैं मुल नहीं पा सकता। हालांकि मुल पाउण वाले ने गाजरां मूलियां भी पाया, मठियाई का सेर देने नूं भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। वह कह लगा एडा कीमती हीरा है तां मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना। मेरे बजुर्गां ने कहा सी कदे इहो जिहा हीरा वेखे ते भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लैके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने के बचे, सारसराय महाराज के चरणा च हाजिर हो। अपने नौकर नूं नाल लैके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गए। बड़े वचन विलास हुए, कई दिन महाराज फिर इहदे घर विच टिके। उही सारसराय धर्म, सारसराय जौहरी की धर्मसारा मुड़ के साहब कलगीधर पातशाह का जन्म स्थान बन गए। पटना साहब विखे पवित्र स्थान से महाराज कुछ दिन टिके। वह कुछ दिन टिकियां टिकियां सालसराय के नौकर अधरके नूं ज्ञान हो गया, उन्हूं मस्तियां प्राप्त हो गई। सालसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलां च उडारियां ला रहे। हथ बन के कहन लगा साहब नूं, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं कहन लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहरां कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इहनूं ज्ञान बख्शिया, इहनूं नाम बख्शिया, इहनूं बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कहन लगे भाई असीं तां हुण चले आं, हुण तूं इहदे चरणी पै जा, ध्यान दे, हुण तूं इहदे चरणी पै जा। कहन लगा महाराज नौकर दे चरणी पाउंदे हो, मालक मेरे कोलों लै के खांदा है। धन गुरु नानक हस पए, कहन लगे रुपये तेरे कोलों लै के यह खांदा रहा, नाम इहदे कोलों लै के तूं लै लै। ऐसे ने नाम वालों यह धनवंत है, रजिया होया, यह इथों पहला प्राप्त करके रजिया होया। रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा, लैंदा रहा, चाकर बनिया रहा, लेकिन जे नाम लेना ही भाई असी तां चले आ सारसराय, जे नाम लेना इहदे कोल है।

अकाल मूर्त अयोनि सहंगुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात निहिंजे रूप रंग रही पीप भूकर है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंज भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिज फिर भवन में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आधारी नानक दास संत पाछा करू राख लियू ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नव निध पाइया सतगुर हुई दयाल

अपने पद करें पद बाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई।

आए जदो आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उथे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होण। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिसके एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्दियाई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्दिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति।

केवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बां बहु भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन

जब लवनी आग मिलार उठे तब लव भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्ग को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनगुरु नानक पातशाह अनगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार ना सारे आपको अनगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगत के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अब गुरु की संगत की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवें गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है तेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

राग तो बाद कल्याण राग का आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा औ कांदरा कल्याणा की तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात की लो की उड़ीक करती है। प्रभु की याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसी काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बाजी सुर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।